श्रोता मित्रों, आप समरिया चौक जाति कार्यक्रम गीत माला 102.8 एफएम पर या तो www.divasfm.com पर गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवार आपनी समक्ष रजूआत कराने पूरी कोशिश करे रात ना 8 थी 10 कलाके।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर। आपने जुदी जुदी बड़ी फैम कहवाई ने कि मसालेदार बनी फरमाइशो आपती हुई छे। हाँ, तो चटपटा चेवड़ा की बात करते तो ने, चटपटो चेवड़ो तुम्हारे खावो हो तो अरे आम बताए जुदी जुदी जात ना कोई केनिया नो ने आफ्रिका नो ने इंडिया नो ने आया, पर तमे पोते बनावता होय अने कोई ने बनावानू कीधुं होय અને તેઓમાં એવી કળા હોય છે કે તમને પણ એમ લાગે અરે વાહ, માં અન્નપૂર્ણા ત્યાં હાજર જ છે। ઓકે, આપ સાંભળ્યા છો ગીતમાળા 102.8 FM ઉપર યા તો www.diversefm.com। બધાને મજા આવી ગઈ તમારું ગીત સાંભળીને। હવે સાંભળીએ એક બીજું, બીજી ફરમાઈશ યશજી।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं चौक जायची कार्यक्रम गीत माला 102.8 एफएम पर या तो www.diversefm.com पर। दुनिया ना कोई पण खूणा में सांभळता होय आपनुं स्वागत छे। अने नमस्ते स्मिता जी, आप पण आवी गया छे। अटपट ओखाणो आ प्रमाणे छे, एक वक्त नुं भोजन पेट भरी ने करावे, एक वक्त नुं भोजन पेट भरी ने करावे, फरी इच्छो तो पण ए काम कदी ना आवे। આમાં ઘણાઈને ખબર હશે શું હશે। ચાલો ચાલો વોટ્સએપ ઉપર જવાબ આપો 07568686863। તમે સાંભળો અને બીજાને સંભળાવો ગીતમાલા। સાંભળીએ કેસરીઓ આશ્વર્ય રાય, આશ્વર્ય મજમુદાર, આશ્વર્ય રાય નહીં મજમુદાર।

सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें, किताबों की तरह जो याद कर ली।

श्रोता मित्रो आप सुन रहे हैं गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 एफएम पर या तो www.diversefm.com पर गीतमाला कार्यक्रम दर गुरुवारे आपनी समक्ष रजूआत करवानी पूरी कोशिश करे छे रातना 8-10 कलाके एक वक्तनू भोजन पेट भरीने करावे फरी इच्छो तो पण ए काम कदी ना आवे सरस सरस मजानो एक जवाब आव्यो छे आम तो तमारी वात साची छे चूरण ना ना खरेखर अच्छा अच्छा ઉપવાસ એ નથી, એકટાણું એ નથી અને ચૂરણ પણ નથી. ધન્યવાદ. સાચી વાત છે, એક વખત ખાધા પછી ના ખવાય. આપ સાંભળ્યા છો ગીતમાળા 102.8 FM ઉપર યા તો www.diversefm.com ઉપર.

श्रोता मित्रों, आप समरिया चौगुजाजी कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM उपर या तो www.diversefm.com उपर गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवार आपनी समस्या रजूआत करवानी पूरी कोशिश करे छे। रात में 8-10 कलाके फक्त 2-3 मिनिट ज बाकी छे जो अटपटा ओखाणा ना जवाब आपो होय तो नहीं तो आवता गुरुवार सुधी वाट जोवी पड़शे। एक वक्त नु भोजन पेट भरी ने करावे, फरी इच्छो तो पण ए काम कदी ना आवे। एक वक्त नु भोजन पेट भरी ने करावे, फरी इच्छो तो पण ए काम कदी ना आवे। आ छे आ अटपटो खाणो आजनु। व्हाट्सएप नंबर 0756868686863। फक्त 3 मिनिट सुधी लाइन चालू छे व्हाट्सएप ने। आ आप सांभळ्या हता गीतमाला